0: नुआ दी है 1 MHz दी वही FM मैं दुरो ना माधो वागो तू
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

हालांकि के इंडिया के बॉलीवुड के फिल्मी दायरा के मशहूर कंगुदा फवा हुनर विरला वकियों तेरिए देहा से गार बनाहर बॉलीवुड तारफ मफहेना वनी आशिकी 2 एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी प्रेम रतन दन पायो आदि किक फदा कामयाब फिल्म तक मशहूर एता लवत के किया दीफा

0: सा से लवता की नुनिमे वाहक तके ए वाहकता मिहारु आ अडका आ रूहकाय ए फोरिया ए जोश किंगुस्तिनी मुलिं एहिं दुनिया का
1: दिवाली ऐसा क्या वाइट तू जाऊन उठ न बिठ न लाव नी की तू तेरे भाई के राड़े नहीं देखा तू इधर कच्चे तू
2: हाँ वो अधे रिमिक्स की बदले नो एक हमको लवे के निस्ते आ दिरु में
0: कोमे हो मत वह के मिंदरु दे जहार
2: रिपीट अंगार दो हो गेरे दिहे जहार अधे बुदा दो हो गेरे बार जहार
3: नॉक नॉक तेरा बाप पाया
4: version 2.0 ಹುದುಕುಲಾಗೆ ಸಾಫುಯ್ ಬಾರತಕು
1: ಇಕನ ವೆರಿಕಮಾ ವಕಿಫ್ ಮುಕೆ ಫುಂಗಸರ್ ಕಳುಕುಲಾ

मुआवत के वर हिग्गे अमरीत लवेंग अडियो के मिदिए गैगंड का फानर वर का मिनट मियोती नुवधिये के मेगाहर्ट्स दिवे एफएम मिकडी का कुरिया मिदने चीटे अमरी क्वेस्ट फर्स्ट के डे तेरी सिंगन दे कुरिया दार दे गैगंड का देती लव देला वाय वर का नेगे जहा देवेनी एहन तेरे एदला फलावत होगे तेरे गाने का सिग्गे अमरीत लवे गेनस्ते न मि फारमी असदु गे फरातु गेनस्ते लवे मि तुम्मिले मीके डीजे वर्षन रिमिक्स जहा देशो उम्मीद करा हम हुरी हाय हम तेरे ना सासा दबस मिला वारा कम दाने कमा

0: नौ दी है 1 MHz दी वही FM ईशान अमादो वागुत
1: नौ दी है 1 MHz दी वही
2: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: Jesus. Ella vea que M. Pase yo tan con la arriba, hostia, anima.
1: Ale, no, ni que campaña, pone que ni que ama mi pima. Ah, ok, tengan la venga.
2: I'm going to go to the house.
3: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी

0: सोच तो सही, क्या हैंड्स में बच्चे होंगे हमारे, मेरे गुड लुक्स और मेरी अकल।
1: तुम क्या चाहते हो लाइफ से बने?
2: रफ्तार, पागलपन, मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही
1: तो क्या नैना,
0: मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।